दिशा तुटतुटु तुम्हें पनीते तुम्हें तन्याते यवये तुम्हें पनीते स्कूला में यवये।